पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए।

0: 3. Leica Radio, finalist in 3 nominations at the Asian Media Awards 2026.
1: बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: Very good morning. स्वागत है श्रोताओं का संगीत प्रेमियों का संगीत की दुनिया में. Like a radio network पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम. And my name is Ravi Sharma. Thanks to Kajal bhai. दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. बृहस्पतिवार है, कुछ एक दर्द भरे गीतों को जगह देंगे आगे चलकर.

0: सुन रे जमी, सुन रे आसमा। नुसरत फतेह अली खान साहब भाई, आज इनको मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि इनके शो में मेरी मुलाकात नाना पाटेकर से हुई थी। मैं स्टेज शो कंडक्ट कर रहा था और नाना आए और कहने लगे कि मुझे खान साहब से वो अराब सुनना है, और नाना साहब की फरमाइश भाई खान साहब ने पूरी की। नाना पाटेकर के साथ मनीषा कोइराला भी तशरीफ लाई थी, मंच साझा किया, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज नाना याद आ रहे हैं, और याद आ रहे हैं जिनकी बदौलत मैं नाना पाटेकर से मिल सका। और मजे की बात साहब, नाना से मैंने एक बात की, मैंने कहा मैं मुंबई आ जाऊं, अपने अभिनय की जो भूख है वो वहां आके पूरी करूंगा।
1: Brought to you by Derry Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Nana Patekar ne bhi wahi kaha bhai jo ek do aur abhinetaon ne kaha tha ki jame raho, yahan jame hue ho. Wahan ka jeevan jo hai, आप कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाएं, लेकिन वो जो लाइफ है, वो जो सड़कें हैं, वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो जो लोगों के साथ व्यवहार है, उसके साथ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात तो सही थी भाई, और लेकिन उस व्यवहार में, उस थोड़े हम मिले भी मंच पर ही, स्टेज पर, नीचे ऑडियंस में नहीं, तो ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते थे, स्टेज के पीछे खड़े थे, प्रोग्राम चल रहा था, और साहब वो मुलाकात छाप बन करके मेरे हृदय पर लिखी गई। आज अचानक जब जब खबर मिली कि नाना पाटेकर नहीं रहे, तो भाई जी चाहा कि कुछ ना कुछ उनके विषय में ज़रूर बताऊं। तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि आप सबको पता चल चुका होगा, जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। गोवा में उन्होंने आखिरी सांस ली। नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने अपने पिता की मौत की पुष्टि की, और ये खबर आग की तरह से फैल गई पूरी दुनिया में। नाना पाटेकर का निधन आज अर्ली मॉर्निंग गोवा स्थित उनके घर पर हुआ। 75 साल के एक्टर पणजी के पास डोना पाउला स्थित उनके अपार्टमेंट में बेहोश पाए गए। जाने के बाद एक निजी अस्पताल, वहां से उनको ले जाया गया, और अस्पताल से जुड़े एक सीनियर डॉक्टर शेखर सालोंखे ने यह जानकारी दी। सालोंखे ने बताया कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद CPR के होते हुए भी पाटेकर को बचाया नहीं जा सका। नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, नाना पाटेकर जैसी एक अपनी दमदार छाप छोड़ने वाली शख्सियत, विशिष्ट व्यक्तित्व यानी खास पर्सनैलिटी और अनोखा प्रभाव बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलता है। बहुत बड़ा योगदान था उनका फिल्म इंडस्ट्री को। उनके निधन से कला जगत में एक बहुत बड़ी रिक्तता यानी खालीपन पैदा हो गया है। मैं उनके परिवार, मित्रों और उनके असंख्य प्रशंसकों, फैंस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। दैट वाज द स्टेटमेंट फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। मेरे भाइयों, नाना के बारे में बातें तो और भी करेंगे, और जैसा हमारे बाली भाई कहते हैं कि वो फिल्म हस्तियों के विषय में वो अपने प्रोग्राम में ज़्यादा जान बातें करते हैं, जुटाते हैं जानकारी, लेकिन साहब उन्हें श्रद्धांजलि देने का अधिकार हमें भी है, तो हम भी अपना कर्तव्य निभाएंगे। और जब खासकर जबकि मैंने उनके साथ मंच साझा किया हुआ है, उनसे मिला हुआ हूँ, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, तो थोड़ी सी अपनी संवेदनाएं, थोड़ा सा अपना हृदय का जो उद्गार, सत्कार, प्यार उनके प्रति मेरे भाइयों ज़रूर प्रकट करने की मुझे अनुमति चाहिए। पर पहले इस बुरी खबर के अलावा और क्या क्या समाचार हैं आज के दिन के साथ जुड़े हुए, लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूज़।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अमेरिका में दुबई फ्लाइट्स के कैप्टन को, जिन्होंने जख्मी होकर के 100 74 लोगों की जान बचाई, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। एलन मस्क का इल्जाम, भारत में स्टारलिंक की एंट्री रोक रहे हैं कुछ उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट। और तेजस्वी यादव ने पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च निकाला है। विस्तार से खबरें। एयरटेल ने स्टारलिंक को भारत में रोकने के एलन मस्क के इल्जामों की भाई निंदा की है और उन्होंने जवाब दिया है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी भारतीय एयरटेल ने एलन मस्क के इस इल्जाम को खारिज कर दिया है कि उनकी सेटकॉम कंपनी स्टारलिंक को भारत में काम करने से रोक रही है। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उनका सेटकॉम उपक्रम यूटेलसेट वन वेब भी भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अमेरिका के टेनेसी राज्य में पिछले सप्ताह मौत की सजा देने की असफल कोशिश के बाद अस्पताल में भर्ती क्रिस्टा पाइक अब चल फिर रही है, उनकी कानूनी टीम के एक सदस्य ने जानकारी दी। कल देर रात बीबीसी के एक कार्यक्रम में यह बताया गया कि वकील स्टीफन फेरल ने कहा है कि उन्होंने पाइक से सीधे बात नहीं की है, हालांकि उन्हें पता चला है कि पाइक पहली बार अस्पताल के कमरे में इधर उधर टहल रही है, जबकि वो मानसिक रूप से दिमागी तौर पर यानी अभी भी धुंधलापन महसूस कर रही है। पाइक को पिछले हफ्ते जानलेवा इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत देने की कोशिश नाकाम हो गई थी और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ज्ञानेश कुमार यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पटना में आरजेडी का मार्च। तेजस्वी यादव ने कहा है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में सो कॉल्ड गड़बड़ी के लिए चीफ कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हम जिम्मेदार ठहराते हैं और उनके खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि फर्जी चुनाव कराकर ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के सत्ता में जाने का रास्ता साफ किया था। जब सच्चाई सामने आई तो हम सभी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एकजुट होना चाहते हैं। महाराष्ट्र में नाना पाटेकर के गांव वालों का कहना है कि नाना उनकी मदद करने में हमेशा आगे रहते थे, चैरिटी के बहुत काम करते थे। हम उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप आज बड़ी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। एक आदमी ने बताया कि श्रीकांत नाम था उसका, उसने कहा मैं उनके घर के ठीक सामने रहता हूं, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी मदद की और 2013 में जब मेरी पत्नी का निधन हुआ तो नाना ने मुझे बहुत साहस दिया और मेरे बच्चों की परवरिश में उन्होंने मेरी मदद की। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ किया नाना पाटेकर ने, थोड़ी जानकारी आगे चल करके देंगे। मनोज वाजपेयी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्होंने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जाहिर किया है। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी का लॉन्ग मार्च आज पहुंच रहा है पेशावर। कुछ इलाकों में वहां इंटरनेट बंद होने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में फॉर्मर वजीर आजम इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर के इस्लामाबाद के लिए शुरू किया गया लॉन्ग मार्च आज पेशावर पहुंच रहा है। इसे देखते हुए पेशावर शहर में सिक्योरिटी की जबरदस्त जो है व्यवस्था की गई है, इंतजाम किए गए हैं। पेशावर के कुछ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी के मार्च के कारण आज बंद रखने का ऐलान किया है। कल शाम के संदेशों के माध्यम से अभिभावकों को छुट्टी की सूचना दे दी गई है, कई संस्थान बंद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च पेशावर शहर से होते हुए पेशावर और चार सद्दा की सीमाओं तक पहुंच जाएगा। पेशावर के कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सेवा बंद होने की भी खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी तक इसकी न तो पुष्टि की गई है और ना ही इसका खंडन किया गया है। ये मार्च ऐसे वक्त में निकाला जा रहा है जब इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान की लीडरशिप के बीच गहरे मतभेद हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है, वहां सीमापुरी के इलाके में कल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया है कि अब तक 3 महिलाओं की डेड बॉडीज बरामद हुई, साथ ही एक शव और मिला है जो एक बच्चे का लग रहा है। इस हादसे पर आम आदमी पार्टी के विधायक वीर सिंह धिंगान ने बताया कि उन्हें बुधवार को 3:30 बजे के करीब सीमापुरी से फोन आया था कि इमारत ढह गई है। राहत कार्य तब से शुरू हो गए थे। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में मुजाहिरा और प्रोटेस्ट चल रहा है और फिर अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि वो काला दिवस मनाएंगे, ब्लैक डे। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की जा रही है और आज 8 अक्टूबर को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, जंगें खत्म कराई हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि किसी भी राष्ट्रपति ने कभी कोई युद्ध खत्म नहीं कराया, मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं, शायद दुनिया के पूरी तरह तबाह होने को भी मैंने रोक दिया है, इसलिए आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज। 2026 के नोबेल पीस प्राइज का ऐलान नॉर्वे की नोबेल समिति कल शुक्रवार को करने वाली है। पुरस्कार के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका फैसला क्या होगा, उनकी ऐसी छवि रही है कि शायद वे मेरे जैसे लोगों को ये पुरस्कार नहीं देते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: कच्ची थी दोस्ती, कच्चा था प्यार, कच्चा था प्यार, शायद इसीलिए दिलों के बीच आ गई दरार।

0: This afternoon will start off dry and settled with plenty of sunshine. It will become cloudier later this evening. यानी दोपहर में भाई अच्छी खासी धूप करेगी लेकिन शाम ढलने से पहले थोड़ा बादल आ जाएंगे और कुछ छुटपुट बूंदाबांदी की भी आशंका बनी हुई है. उधर भाई ये लंदन में इस तरह का है और टेम्परेचर जो 15 डिग्री होगा तो मिडलैंड में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री तक ही जा पाएगा.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार लाइका रेडियो पर मनोरंजन कार्यक्रम के लाइका रेडियो गोल्ड जो हमारी सेवाएं हैं गोल्डन सेवाएं, तो लाइका रेडियो नेटवर्क की लाइका गोल्ड रेडियो पर ये मनोरंजन प्रोग्राम का दूसरा दौर शुरू हो रहा है और इसका जो आरंभ है हम चिंतन से करते हैं। चिंतन आज का विचार, और बहनों भाइयों आज के विचार के लिए आलेख हमें कांति भाई देसाई ने भिजवाया है। कांति भाई जो है फिल्मी दुनिया के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हैं और भाई वो फिल्मी बातों के माध्यम से हमें परिचित कराते हैं। वैसे हमारे बाली भाई जो ब्रह्म भट्ट जी हैं उनसे भाई बहुत सारी फिल्मी जानकारी आप तक पहुंचती रहती है, वो भी बताएंगे, लेकिन कांति भाई चाहते हैं कि आज उनकी ओर से भी फिल्म अभिनेता स्वर्गीय नाना पाटेकर को चिंतन के रूप में श्रद्धांजलि समर्पित की जाए। नाना पाटेकर चिंतन दे सकते हैं अपने जीवन से, बिल्कुल बहन भाइयों उनका जीवन कुछ ऐसा था कि दो चार घटनाएं तो उनकी चिंतन बन जाती हैं, लेकिन पूरा जीवन कितनी सादगी से वो जी रहे थे, कितने चैरिटी कार्य वो कर रहे थे, कितने लोगों को प्रेरणा वो दे रहे थे, मदद वो दे रहे थे, और आप उन्हें देखेंगे तो कितने सीधे साधे वो रहते थे। वो मुझे मिले, कांति भाई जानते हैं, और मंच पर मिले, कार्यक्रम हो रहा था नुसरत फतेह अली खान साहब का, मैं स्टेज कंडक्ट कर रहा था, मंच संचालन अनाउंसर का काम, और स्टेज के पीछे से नाना पाटेकर और पर्दे के पीछे मनीषा कोइराला तशरीफ लाए, उनसे बात की, वो गंभीर आवाज, वो पर्सनैलिटी, बहुत सादगी के साथ उन्होंने कहा कि मैं खान साहब की आवाज में आलाप सुनने के लिए आया हूं, माय फेवरेट। उनकी फरमाइश पूरी हुई, लेकिन बहनों भाइयों आप जानते हैं कि आज अर्ली मॉर्निंग गोवा में उनका निधन हो गया। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, मैंने फैसला किया कि कांति भाई से संपर्क करें और उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। 75 वर्ष की उनकी उम्र थी, गोवा में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका असली नाम था विश्वनाथ पाटेकर। 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरूड जंजीरा में उनका जन्म हुआ था और मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के वो स्टूडेंट रहे। अभिनय की शुरुआत फिल्मों से नहीं, रंगमंच से हुई। हाँ बहन भाइयों, जो एक्टर, जो कलाकार, जो अभिनेता रंगमंच के रास्ते से फिल्मी दुनिया में प्रवेश करता है उसका अभिनय बहुत प्रभावशाली मजा हुआ होता है, क्योंकि फिल्मों में तो रीटेक करने की इजाजत होती है भाई, एक दृश्य आप नहीं कर सके, फिर आप सुधार के दोबारा करें, 3 करें, 4 करें, पर मंच पर जो आपने कर दिया वो हो गया, अच्छा किया या बुरा किया उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है, एक बार तो जो मंच पे आपने कर दिया, अब अगले नाटक में कहीं और किसी स्टेज पर आप उसे सुधार सकते हैं। नाना ने मराठी रंगमंच से अपने अभिनय की यात्रा शुरू की और शुरुआती दिनों में उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बीच काम किया, थिएटर करते रहे, और यही रंगमंच उनकी एक्टिंग की, उनके अभिनय की सबसे बड़ी पाठशाला बनी। मेरा भाइयों मैं बताऊं, इन लोगों से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं। मुंबई में मैंने नाटक देखे, महंगे होते हैं फिल्मों के मुकाबले नाटकों का प्रदर्शन, चिंतन पर सीखा उस नाटक में अभिनेता कैसे अपने भीतर के व्यक्तित्व को, जो है पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करता है। अपनी यूनिवर्सिटी में मुझे 3 बेस्ट एक्टर डिक्लेयर किया गया और मेरी इच्छा थी कि मैं फिल्मों में जाऊं, लेकिन नाना ने बताया कि पैसों के कारण उन्हें नाटकों की बजाय फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। और बहनों भाइयों उनकी जुबानी वो खुद बताते हैं, कि वो तो अभिनय स्टेज पर ही करना चाहते थे लेकिन फिल्मों की ओर फिर कैसे मुड़ गए?
1: मैं वैसे तो अव्वल तो मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहता था. मैं थिएटर से बड़ा खुश था. स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्मों में आया. उसका कहना था नाना ये बड़ा कैनवास है, एक ही वक्त तुम इतना कर सकते हो, इतने लोगों तक पहुंच सकते हो, तुम्हें जो कहना है जिस तरह की तुम्हारी सोच है, तो मैं चाहती हूँ कि तू फिल्म में आ जाए. और उसकी बदौलत में उसने बहुत ही ज़बरदस्ती की. तो आज की आवाज़ में मैंने काम की थी. उसके पहले मैंने एक फिल्म की थी उसी के साथ, गमन की थी. उसके पहले मैंने डॉक्यूमेंट्रीज की थी. तो और वजह ये थी वो करने की, पैसे चाहिए थे. क्रांतिवीर का मुझे मैं डायलॉग नहीं लगता, मुझे लगता कि वो भड़ास थी, वो जो निकल गई अंदर था, वो इर्द गिर्द एक दूसरे के गर्दन काट रहे, वो देखा था मैंने उस वक्त. उसका वो जो एक परिपाक था, वो रिएक्शन थी, या तिरंगा का जो है, वो सभी वो वही है. लेकिन डायलॉग करके वो होता नहीं. फिर एक आध लाइन कोई होती है, लोगों को पसंद आती है, फिर हाँ एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है. हालांकि उसके अंतरे जो थे गिरो साले गिरो, उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिर के भी अपने अस्तित्व को खोने नहीं देता, तो वो जो अंतरे थे वो लोगों के समझ में नहीं, उन्होंने बाहट नहीं किए, समझने की कोशिश कम की. उसका जो पहले
0: एक मच्छर आदमी को एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता है. 75 साल की उम्र में भाई निधन हो गया नाना पाटेकर का, मगर ये आवाज ये अंदाज हमारे दिलों पर लिखा हुआ है और लिखा रहेगा.
2: बेटे मल्हार पाटेकर ने
0: एक मच्छर आदमी को हीड़ा बना देता. लेकिन वो जो भाई गुस्सा था, जो नफरत उनके किरदारों में कभी आपने देखी होगी, वो उसकी अभिव्यक्ति जितनी सफलतापूर्वक कर सकते थे ना, वो अपने भीतर के उस जबरदस्त प्रेम को भी प्रकट करते थे, तो वो भी भाई कभी कभी जो है बड़ा डरावना सा लगता था जब वो बताते थे मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कहां तक मैं जा सकता हूं तुम्हारी मोहब्बत में, कैसे बताऊं कौन हूं मैं और तुम क्या हो मेरे लिए और मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए. गीत बन गए भाई उनके अंदाज, ये डायलॉग्स उनके संवाद.

0: नाना पाटेकर।
1: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो, मेरी हर बात में तुम हो, मेरे दिन रात में तुम, सुबह में तुम, शाम में तुम, सोच में तुम, काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो मैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें?

0: ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को छीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ कैसे
1: बताओ। पद्मश्री नाना पाटेकर। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग गोवा में उनका निधन हो गया। भावभीनी श्रद्धांजलि उनके संवादों के माध्यम से, उनके गीतों के माध्यम से, उनकी फिल्मों के माध्यम से।
0: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यू ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम,

0: देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन?
1: एक ही अभिनेता इतने अलग अलग रूप, भाई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गुस्से का ही प्रदर्शन कर सकते थे, उनकी एक्टिंग में कॉमेडी भी देखने को मिली। वेलकम फिल्म में वो संवाद बोलते नहीं थे, जीते थे उन्हें। उनकी आवाज में अभिनय से ज्यादा जीवन का तजुर्बा जो है वो सुनाई पड़ता था। शायद यही कारण है कि क्रांति वीर से लेकर वेलकम तक एक ही कलाकार हमें गुस्सा भी दिला सकता था, रुला भी सकता था और हंसा भी सकता था। वो सिर्फ एक्टर ही नहीं, डायरेक्टर भी थे। प्रहार फिल्म का उन्होंने डायरेक्शन भी किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फौजी की ट्रेनिंग भी दी गई थी, ली थी उन्होंने, ट्रेनिंग ली थी। और जानते हैं उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल उन्होंने बाद में इंडियन फोर्स में शामिल होकर के इसका इस्तेमाल किया, यानी भारतीय सेना में वो असलियत में जुड़े थे एक फौजी बन करके। सेना से यानी फौज से उनका लगाव था। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग ली, फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री से वो जुड़े और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, उस लड़ाई के दौरान वो फौजियों के बीच में भी रहे और लेफ्टिनेंट कर्नल के जो है ऑनरेरी पद तक वो पहुंचे थे, यानी फौज में भी उन्होंने सेवाएं दी। क्या कहने नाना के, उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और क्रांतिवीर उनके करियर का मील का पत्थर थी। 1994 में उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला और गायन में भी, भाई वो ये भले ही डायलॉग्स लगते हैं लेकिन वो एक गीत की तरह से उन्होंने प्रतिष्ठित किए।
2: सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। सारा एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।
1: ऐसा लगता है जैसे एक एक लफ्ज जो है वो चिंतन है नाना पाटेकर का। बहन भाइयों, आज सुबह वो हमसे बिछड़ गए लेकिन उनका अभिनय, उनके संवाद, उनकी वो जो फिल्में हैं जिंदा रहेंगी। भावभीनी श्रद्धांजलि नाना पाटेकर के प्रशंसकों की ओर से स्वर्गीय पद्मश्री नाना पाटेकर के लिए। आज के चिंतन में भाई उनके जीवन की कुछ बातें और कुछ उनकी फिल्मों की और उनकी संवादों की हमने चर्चा की। जो इंटरव्यू का थोड़ा सा अंश हमने उन्होंने जो बीबीसी को दिया था वहाँ से कुछ एक थोड़ा सा अंश हमने प्रोग्राम में शामिल किया। और बहनों भाइयों, कांति भाई हमारे, कांति देसाई, उनके द्वारा दी गई जानकारी हमने प्रोग्राम में शामिल की। आज का चिंतन समेटते हुए हमारे भीतर का जो व्यक्तित्व है ना, उसे रोक के मत रखो, दबा के मत रखो, भले ही एक्टिंग के माध्यम से, भले ही संवाद के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, उसे आने दो बाहर नाना पाटेकर की तरह। आज का चिंतन समेटते हैं। आज का चिंतन याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज।
2: कल पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हांफते हैं, शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है और हम भगवान के चहेते जानवर इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं।
1: भाइयों, गुस्सा, ये जो देखिए उन्होंने प्यार का प्रदर्शन भी किया और उन्होंने कॉमेडी भी की। वेलकम फिल्म में उनकी कॉमेडी देख करके बार बार उनके डायलॉग याद आते हैं आप सब की ओर से, उनके प्रशंसकों की ओर से। और कांति भाई देसाई की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ कार्यक्रम को समेटते हैं। याद दिला दूं बाली ब्रह्म भट्ट भी बहुत सारी जानकारी उनके विषय में लेकर के आएंगे। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होता है। चिंतन आज का समाप्त होता है।

लौट आइए संगीत की दुनिया में। बाद मुद्दत के उसे देखा लोगों, वो जरा भी नहीं बदला लोगों। बाद मुद्दत के उसे देखा लोगों, वो जरा भी नहीं बदला लोगों। दोस्तों खैर कौन किसका है, और उसने दुश्मन भी नहीं समझा लोगों।

0: सितम।
1: मेरी तरह किसी को तू अपना बना के देख, मैं रो रहा हूँ तू भी जरा मुस्कुरा के देख। तू मेरे बाजुओं में नहीं मेरे दिल में है, तू मुझसे इतना दूर नहीं, जरा पास आके देख।

मौका भी आता है कि भाई खुशी का अवसर होता है और दिल रो उठता है। ये शहनाई, जब कोई अपना अलग होता है, होता पर फिर भी कहते हैं कि खुशी का मौका है, लोग बधाई दे रहे हैं और आप छुप छुप करके सुबह सुबह करके आंसू बहा रहे हैं। कब

0: ये दर्द ये आवाज ये शहनाइयां दे रही है दुहाई कोई चीज अपनी हुई है पराई किसी से मिलन है तो किसी से जुदाई पर रफी साहब ने इस गीत में जैसे जिंदगी भर दी सारी पीड़ा उजागर कर दी बेटी की विदाई की और रफी साहब ने बताया कि भाई ये गीत गाते हुए रिकॉर्डिंग कराते हुए सब सचमुच उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी की विदाई का नजारा था वो दृश्य था जब उनकी बेटी की डोली उठी थी लेकिन इस प्रोग्राम में ये गीत आज शामिल किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है और वो ये कि भाई फिल्म के हीरो ये फिल्म थी नील कमल और फिल्म में नायक थे कुलभूषण पंडित कुलभूषण पंडित आज अपने जन्मदिन मना रहे हैं बहनों भाइयों कंफ्यूज मत होइए कौन है कुलभूषण पंडित जानते हैं आप वो जिनकी संवाद जो है जिनकी डायलॉग डिलीवरी जो है वर्ल्ड फेमस है और भाई उनके प्रशंसक जो है अक्सर दोहराती है उनकी आवाज उनका अंदाज जिनके अपने घर शीशे के होते हैं चड़ा सेठ वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते राजकुमार साहब का आज जन्मदिन है भाई आज दुनिया में होते तो वो अपना जन्मदिन मना रहे होते लेकिन हम याद करते हैं उनकी श्रद्धा से उनकी फिल्मों को और उनके डायलॉग्स को उनकी फिल्म का गीत आज ये प्रोग्राम का तीसरा और अंतिम दौर जो दो विदाई गीतों से शुरू हुआ और ये दूसरा गीत फिल्म नील कमल से था रवि साहब के संगीत पर रफी साहब की आवाज ससुराल में इतना और शब्दावली देखिए उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले तो साहब ये प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है आपको बता दूं माय नेम इज रवि शर्मा और मैं ये कार्यक्रम लेकर बहनों भाइयों एक बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ कुछ दर्द भरे और कुछ आप दूसरे रंग के भी गीत आपके सामने परोसूंगा लेकिन पहले लेट मी टेल यू द पाउंड्स रेट बाय State Bank of India, UK.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India, UK. Giving 127.45 rupees for £1 today. This is today's rate. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: It's back, it's bigger and better.
3: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
2: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
3: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Gariya Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
2: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, home and away holidays, exclusive charity partner, Go Dharmic.
3: For store bookings, call 07803 240580.
2: Or visit Diwali Shopping Festival. Diwalishoppingfestival.co.uk

0: सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित संगीतकार के होनहार पुत्र आनंद मिलिंद आर द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। पर बहनों भाइयों, उनके लिए एक संगीत के घराने से संबंध रखते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकारों के रूप में उतरना इतना आसान नहीं था। उन्होंने भी मुश्किलों का सामना किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के असिस्टेंट भी वो रहे और साहब जैसे कि ऐसे ऊंचे खानदान से और भाई नामी ग्रामी संगीतकार से संबंध रखने का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। नुकसान ये कि लोग उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। उनके पिता की तरह वो भी धुने बनाएंगे, छा जाएंगे। पर काफी देर तक तो साहब नए संगीतकारों पर कोई दाव लगाने को तैयार नहीं था। और फिर फिल्म मिली तो फिल्म आई और चली गई, कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाई। कल भी बात करेंगे इनके बारे में क्योंकि मेरे कार्यक्रमों में तो इनका अंतिम जो है वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक के रूप में गीत कल शामिल होगा। आनंद मिलिंद आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क। भाई कुछ संदेश भी हैं हमारे स्क्रीन पर जो आपके साथ हमें साझा करने हैं और उनमें एक ये साउथ होल ट्रैवल के बारे में। साउथ होल ट्रैवल याद दिला रहे हैं कि भाई उनकी जो दुबई डील्स है ना, बड़ी फेमस, वो उपलब्ध हैं। और क्या है उन डील्स में? वेल, एट देयर सेलेक्टेड पार्टनर्स होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स just from £629 per person for 3 nights. Travel by 10th December. This is the condition. And South Hall Travel ka phone number is 0208-843-4444. Or you can visit southholtravel.com.
1: Ye hai Laika Radio.
3: Laika Radio.
1: London, Midlands, Manchester. This is the Laika Radio Network.

फिर आंख से आंसू बरसे फिर छाई घटा घनघोर लिखने वालों से कह दो लिखें एक कहानी और दर्द की वियोग की भाई अपने रूठते हैं साथ छूटते हैं दिल टूटते हैं तभी ऐसे गीत लिखे जाते हैं गुथे जाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना और बहनों भाइयों प्रोग्राम को समेटने से पहले बता दूं कि आज गौरी खान अपना जन्मदिन मना रही हैं शाहरुख की पत्नी अब साहब गौरी खान से भी मैं मिला आप कहेंगे कि जी हर किसी से मिले आप बंदे हैं कि कोई जादूगर है फरिश्ते हैं कोई भाई हर जगह मौजूद हो जाते हैं जैसे वो कोर्ट में होते हैं ना गवाह वो हर घटना के लिए गवाही देते हैं तो जज भी उनसे ये नहीं पूछता कि भाई तुम कैसे फरिश्ते हो कि कहीं भी जाकर के घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए मौजूद हो जाते हैं वहाँ जा कुछ होने वाला होता है पर रवि शर्मा गौरी खान से मिला है और बहुत अच्छी तरह लगभग शाहरुख भी साथ थे और दिन भर हमने साथ गुजारा था यहाँ लंदन में ही और भाई आज उनका जन्मदिन है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू गौरी राजकुमार साहब का भी जन्मदिन 1926 में जन्मे थे कुलभूषण पंडित ओ मदर इंडिया क्या फिल्म थी भाई और भी नई रोशनी और नीलकमल कैसी कैसी फिल्में दी थी मोना सिंह भी आज ही जन्मी थी वो जस्सी जैसी कोई नहीं और मोना सिंह ने कई और फिल्मों में भी काम किया बड़ा अच्छी अभिनय की स्वामिनी थी वो स्वामिनी है भाई कहीं गई नहीं अभी इसके अलावा आज डेथ एनिवर्सरी है जेपी और जेपी कौन थे जयप्रकाश नारायण जी उनके बारे में एक बार तो पहले भाई झूठी खबर फैल गई कि उनकी डेथ हो गई है बड़ी फजीहत हुई थी फिर रेडियो पर अनाउंसमेंट भी हो गई दर्द भरा संगीत बजने लगा फिर उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे पार्लियामेंट में आके उनको बयान देना पड़ा कि भाई ये गलती हो गई है जयप्रकाश नारायण ठीक हैं ठीक ठाक हैं और उनकी मृत्यु नहीं हुई है फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी के बारे में झूठी खबर फैलती है ना मृत्यु की तो उसकी उम्र बढ़ जाती है नेचुरली उम्र तो बढ़ जाती है भाई क्योंकि वो जिंदा है और जिएंगे अभी लेकिन ये मान्यता भी है और आज डेथ एनिवर्सरी है एक महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire. यस यस यस दिस इज लाइक अ गोल्ड हमें पता है लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम बता रहे थे बहन भाइयों मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं कहानीकार हुए हैं लेखक हुए पहले धनपत राय नाम से वो लिखते थे लेकिन बाद में तो उन्होंने साहित्य अपने नाम से भी लिखा तो उनकी फिल्म का उनके नावल पर उनके उपन्यास पर बनी एक फिल्म का गीत सुनवाते हुए हम आपसे विदा लेंगे तो आप अब बाली भाई का इंतज़ार कीजिए और रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के और उर्दू में भी लिखा उन्होंने बहुत बड़े साहित्यकार

Munshi Premchand, the writer, died on 8th of October in 1936. Jabki Jay Prakash Narayan, Yug Pravartak Bhai, he died on 8th of October in 1979. आपके भाई जन्मदिन मनाने वालों के नाम मैंने बताए, लेकिन आज नाना पाटेकर की दुखद मृत्यु हुई, उस पर विनम्र श्रद्धांजलि, हार्दिक संवेदना। और इन भावों के साथ रवि शर्मा आपकी अनुमति चाहता है। हैव ए सुपर्ब डे। बाय बाय।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Dekha jaye to Nana Patekar ji used to talk about demise, death. And when he spoke about this, it seemed like he knew something.
3: हमको मालूम है कल जाना है अमाल को हमको बारह मन लकड़ी लगने वाली है उतनी ही लगनी है दैट इज माय फाइनल प्रॉपर्टी बेटा वो मैंने अपनी लकड़ी जमा करके रखी है और वो सूखी है उसी में जलाना गीली लकड़ी मत इस्तेमाल करना है तो धुआं आएगा दोस्त लोग अगल बगल के सब बाकी सभी लोग जमा होंगे उनके आंख में जाएगा उनके पानी आएगा उससे और मरते वक्त गलतफहमी होगी कि मेरे लिए रो रहे हैं तो कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए
2: दैट मैन वाज सो डीप एंड ही यूज्ड टू हैव इमोशनल डायलॉग्स एंड ही यूज्ड टू टॉक फैक्ट्स एंड व्हेन ही डिड पीपल अंडरस्टूड हाउ ही डिड इट ओनली ही नोज
0: लाइका रेडियो Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. And drive back with Raj Padden weekdays at 4 p.m. Like radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
4: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
5: Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
6: Falcon Chakki Atta 10 kilos plus Suhana Basmati Rice 5 kilos, both for $11.99. Falcon Red Lentils 1.5 kilos, 2 for $3.50. Falcon Broken Cashew Nuts 600 grams, just $2.99. Sunfeast Dark Fantasy Biscuits 150 grams, only 99 pence each. And Samara Premium Tea 1 kilo, $3.99.
5: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU 2A Rowlett Hill Leicester LE54UN or Falcon Supermarket 135 Carlton Road Nottingham NG32FN Happy Diwali
7: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026
8: Discover Kailas Mansarovar Chardham Amarnath Sri Lanka with Ayodhya Ayodhya with Kashi The Golden Temple Amritsar and more
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour
8: Also explore 2026 cruises
7: from Alaska to the Caribbean the Mediterranean Japan and Korea Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
9: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
10: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with live from India. Saturday 17th October Bapore 1-4 at Avanti Field School, Lester. 1-10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Peaches 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fan. Radio partner Laika Radio.
11: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन

0: film Rolame Mustafa, 1997 ki film, Kavita Krishnamurti and Hariharan singing, we are remembering Nana Patekar ji.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Koka Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: I remember meeting Nana Patekar ji at the Juhu Centaur. Ek hall tha, Harbour Hall, Juhu Centaur mein. Wo abhi band ho chuka tha because of property issues. And sometimes people used to get together there for drinks. So main jab wahan gaya to by the pool side Nana Patekar ji khade the wahan with Mani Ratnam, the great director, film Dil Se, etc. So wo baate kar rahe the aur unhone immediately mere ko dekha to kaha ke Bali idhar aa, idhar aa, idhar aa. I want to introduce you to Mani Ratnam ji. I said, who doesn't know him? He said, Mani Ratnam ji, this is Bali, you know. And he says, London se aaya hai chokra, you know. He said, he's come from London. And he's always on television and in parties. And he's a party animal sort of thing, you know. And we were having a good laugh. And he introduced me and he says, Achha chokra hai, isko gana gawana mere liye. So there was a film in which the song was Love Rap. And उस फिल्म के अंदर मेरे को बुलाना था इन्होंने रैप करने के लिए लेकिन मैं लंदन में था सो आई मिस्ड आउट द अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग द रैप कभी 101 कभी 102 ओ लव फीवर और समथिंग लाइक दैट गाना जो था सो आई मिस्ड आउट एंड ऑफ कोर्स अमित कुमार वाज देयर एंड ही दे ऑल गॉट टुगेदर एंड डिड द रैपिंग एंड एवरीथिंग इट वाज नाना हिमसेल्फ आल्सो He did the rapping in that one and he said, Ye tere liye rakha tha, tu tha nahi yahan. You know, afterwards when he met me, I went to see his play Purush and what a beautiful play. He took it all over America as well. So, hamara ek common agenda tha, ke ek driver tha mera. He was a Marathi guy and he was under trial for 3 months kyunki mera driver chala gaya tha gaon. So, मैंने उसको ट्रायल पे रखा था तो एक दिन उसको पता चला कि नाना पाटेकर इज लुकिंग फॉर अ ड्राइवर सो मेरे जाने बगैर वो ड्राइवर वहाँ उनको मिलने चला गया और उन्होंने मराठी में बात की और कहा कि उसने बताया नहीं कि वो मेरे लिए बाली ब्रह्मट के लिए काम कर रहा है सो नाना जी ने कहा कि अच्छा है आ जा तू कल से सो ही केम एंड टोल्ड मी ही सेज बाली जी आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू गो बिकॉज नाना जी की नौकरी मिली है मैंने बोला अरे वाह ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन तू जा डोंट वरी ऑल द बेस्ट वो चला गया और मेरे पास आया अबाउट 7-8 दिन के बाद एंड ही सेज आई हैव लेफ्ट दैट जॉब आई हैव लेफ्ट दैट जॉब ही सेड क्या हुआ ऐसे इनका टेम्पर बहुत खराब है एक दिन रात को ना घोड़ा दिखा दिया घोड़ा माने बंदूक तो बोलते कि मेरे माथे पे बंदूक रख दी और इन्होंने गुस्सा किया मेरे से तो 2 दिन से मेरे को बुखार था और मैं सो नहीं पाया इसे आई डोंट थिंक बोलते कि लेट नाइट बहुत हो जाती है तो मेरे को वापस आना है बट देन आई हैव ऑलरेडी हैड अ ड्राइवर बाय देन यू नो बट दैट वाज वन इंसिडेंट एंड आई टोल्ड नाना जी अबाउट इट एंड ही लाफ्ड एंड लाफ्ड यू नो अबाउट इट एंड देयर वाज वन कॉमन रेस्टोरेंट हम दोनों की फेवरेट थी विच वॉज कॉल्ड रिदम रेस्टोरेंट इन लोखंडवाला अभी बंद हो चुकी है मेरे को लास्ट ईयर पता चला वहाँ पे नाना पाटेकर जी उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि मेरे को कीमा खाना है बट आई वॉन्ट द कीमा अकॉर्डिंग टू माई स्टाइल उन्होंने कहा कि ये कीमा मेरे को ऐसा चाहिए तो उन्होंने रेसिपी दी और इतना ब्यूटिफुल कीमा था वो उन्होंने जो रेसिपी दी थी तो मैं जब रेस्टोरेंट पे गया मैंने कहा कि कीमा मटर मेरे को चाहिए बोले कि नाना जी ने हमको बोला था एक रेसिपी वो आपको दूं तो मैंने बोला ऑफ कोर्स नाना जी तो बड़ा अच्छा खाना भी पकाते हैं सो देन आई ट्राइड दैट कीमा एंड आई गॉट हुक्ड ऑन इट इट वाज हॉट एंड इट हैड लॉट ऑफ ग्रीन चिलीज इन इट इट हैड लॉट ऑफ जिंजर इन इट एंड एकदम सूखा था एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुली प्रिपेयर्ड So I called it Nana Patekar's Keema, you know, Nana Ji's Keema. So I told him, I said, us restaurant mein maine famous kar diya hai. Jo bhi jata hai wahan, बोले वो नाना पाटेकर वाला कीमा खाना है. So then that restaurant started selling keema like anything because they said Nana Patekar ji wala keema. And all my friends, including the assistant commissioner of police and all of them, we used to go there with Shravan ji of Nadeem Shravan, fir Lawrence D'Souza ji. Hum jab bhi jate the, maine unko introduce kiya tha Nana Patekar ji ka keema. So that those were some of the common things that I experienced with Nana Patekar ji. And one day a cousin of mine was buying a car, and that was a Skoda, and he was at the showroom, and Nana Patekar ji was there also buying a car. So he said, Nana ji is here. He phoned me. I said, phone de. I said, Nana ji, gaadi khareed rahe ho, kaun se color ki loge? Kaun bol raha hai ji? Maine kaha, Bali Brumbad. Are, tere ko kaise pata chala? Bole, mera cousin hai ye. तो बोलते अच्छा अच्छा तेरे को ही मैंने फोन करना था, तेरा ढूंढ रहा था नंबर में, वो पुरुष मेरा प्ले है ना उसमें तेरे को आना है, वहां पे बात हुई थी हमारी. सो दैट वाज अ फ्यू इंस्टेंसेस विद नाना पाटेकर जी मेरे साथ.
2: जब सामने आ जाते हो, क्या जाने क्या?
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3204, Indian rupees 127.86, Afghan Afghanis 85.80, Pakistani rupees 365.79, Kenyan shillings 171.34 and Mauritian rupees 62.72.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £100.31 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica
4: Radio. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूं. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
5: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
6: Make your celebration special with Falcon Festive Offers.
7: Soghat Plain Paratha, 1.6 kilos, 2 for 3.79. Shankar Grated Coconut, 400 grams, 1.29. Suhana Son Papri, 400 grams, 2 for 2. Shan Masalas, 2 for 1.79. Vikano Alu Paratha, 400 grams, buy one, get one free at 1.99. Hamza Masala Fries, 400 grams, 2 for 2.50.
6: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82 A Syston Street, Leicester, LE12JU, 2A Rowlands Hill, Leicester, LE54UN, or Falcon Supermarket, 135 Carlton Road, Nottingham, NG32FN. Happy Diwali!
8: Janan. For 15 years, Janan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Janan. For you, for us and for everyone. The Janan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including Birmingham and Leicester. Or shop the sale online at janan.com and junaidjamshed.co.uk. Janan.
9: Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376.
10: Passports, tickets, kids' tablets.
11: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
10: And checking in with grandma.
11: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
10: That's why I got Simsy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
10: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Holiday sorted.
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
13: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Catch the evergreen classic, Kabhi Kabhi, on its 50th anniversary. This Sunday from 2 p.m. at your nearest Showcase Cinema. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFF UK.

0: listen to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
0: Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest
2: Asian track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles. Quick and tasty noodles in 12 flavors.

0: रफी साहब ने गाया फॉर राजकुमार इन लाल पत्थर और इसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और लिरिक्स लिखी नीरज जी ने 1971. नेक्स्ट मुकेश जी.
1: Advertise your business on Leica Radio Network, covering Greater London, the Midlands, Greater Manchester and West Yorkshire. Call 0207 132 1458 or email sales@leicamedia.co.uk.
0: Yeh gana film Phool Bane Angare, 1963. Picturized, of course, on Raj Kumar. Music, Kalyan Ji Anand Ji ka aur Anand Bakshi ki lyrics. Enjoy the song to the fullest. Chaand aahein bharega.

0: वाह वाह क्या गाना है ना और नेक्स्ट गाना आपने रफी साहब को सुना आपने मुकेश जी को सुना अभी रफी साहब और मुकेश जी दोनों शैलेंद्र ने लिखा और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया एक गाना है फिल्म उजाला जब राजकुमार जी ने कहा कि पूरी फिल्म में मेरे को कोई गाना नहीं मिल रहा तो फिर ये गाना उनको उन पे और शमी कपूर पे पिक्चराइज हुआ
1: This is Leica Radio across the Midlands.
0: यारो सूरत हमारी पे मत जाओ शमी कपूर एंड राजकुमार आई होप यू एंजॉयड द ट्रिब्यूट
2: हमारी पे मत जाओ यारो सूरत हमारी पे मत जाओ यहाँ भी दिल है यूँ हमसे ना कतराओ यहाँ भी दिल है यूँ हमसे

0: देव साहब ने इंट्रोड्यूस किया देश परदेश में और टीना मुनिम लता जी ने गाया फॉर टीना मुनिम
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
0: And this is Usha Kiran. Unke bare mein baat karenge. क्या गाना है सुनिए पहले

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फौरन उनका फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या कैटरिंग रागासन
2: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ A lifetime. Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: ਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में
2: Rock to Winston Green. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. Next, Radio Wally's roller coaster with Radio Wally on Leica Radio Midlands. Trending track of the week.

0: One of my favorites again from the 90s for the movie Dil Na Jaane Kahan Dil Kho Gaya.
1: It's time for everyone's favorite ride. The Radio Wally Roller Coaster.
2: Kabhi, kabhi. Catch the evergreen classic Kabhi Kabhi on its 50th anniversary.
3: Mere khayal mein tumhe shaadi kar leni chahiye.
2: This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase Cinema.
3: Humne tay kiya tha ki hum kabhi ek dusre ke raaste se nahi guzrenge.
2: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
4: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place.
5: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
8: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर Travel Mantra.
9: New at Pepe's.
10: Pepe's Melts.
9: Flame grilled flavour, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavour packed toppings in toasted focaccia.
10: Or go for paneer melts with the same Pepe-licious flavour. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
9: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
10: New melt.
1: The true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।